प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असी जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नूं एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों, उसकी मंजिल नालों, उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नूं यह नहीं पता कि वह जा किधर नूं रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानूं यह पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नूं जा रहे हो, बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

निज कर महल पावो सुख सहज बहुर न होए गो फेरा। जदों तुसी अपने निज घर दे विच चले जाओगे इसका भाव यह होया कि हुण असीं अपने घर दे विच नहीं, बेशक असीं सब सोचते हैं कि साडे पास घर है पर महाराज कहिंदे हन ओह तुहाडा निज घर नहीं। निज घर महल पावो सुख सहजे, कहिंदे उत्थे जा के ही सुख अते सहज तुहानू प्राप्त होना है, बहुर ना होएगो फेरा अते द्वारा फिर फेरा नहीं पाएगा, द्वारा फिर आना नहीं होएगा। पर सवाल पैदा है कि साड़ी जिंदगी दे विच ऐसी अवेयरनेस क्यों नहीं आती, ऐसी जागरूकता क्यों नहीं आती, असी कंसर्न क्यों नहीं। हुण निज घर दे विच जाना, जम्मण मरण दे विचों मुक्त होना कोई साडे लई कोई खास वड्डा इशू नहीं। इट इज नॉट अवर डे टू डे लाइफ इशू विच बॉदर्स अस, नो, ये कोई साडे लई खास समस्या नहीं। सानू सबना नू अपने अपने अंदर इमानदारी दे नाल अपनी सच आवाज नू सुनना चाहिदा है कि की असी सच्ची इस इशू नू बहुत अहम अपनी जिंदगी समझते हाँ, कि यह साड़ी कोई प्रायोरिटी लिस्ट दे विच किते आंदा है। साड़ियां होर बहुत सारियां प्रायोरिटीज हैं, बहुत सारे एजेंडाज हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, पर यह गोल जो है वो सिर्फ कहन सुन मात्र है। दिस डज नॉट बॉदर अस। पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी जीवन की यात्रा सफल ही उदों हुई है, मेरी रियल सक्सेस लाइफ भी इस गल दे विच है कि मेरा आना जाना जिहड़ा है वो खत्म हो गया, आवन जान रहे मिल साधा। अते गुरबाणी दे विच ए इशू बहुत भारा है, बहुत भारा इशू है। प्रभ जन्म मरण निवार, इस दे विच देखो एक तरला, एक पुकार, एक बेनती, एक जाचना है कि ए प्रभु मेरे ते कृपा कर, मैनू जन्म मरण दे विचों निकाल ले, मेरा जन्म मरण खत्म कर दे। प्रभ जन्म मरण निवार, हार पर्यो द्वार, मैं हार के तेरे द्वारे ते आके डिग पिया हां। तो सात संगत जी, असी अपने जीवन दे विच क्यों नहीं इन्हां तमाम एस्पेक्ट्स के प्रति फिक्रमंद क्यों नहीं, चिंतातुर क्यों नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस शब्द नु आरंभ इथों कीता है, अमृत काया रहे सुखाली। कहिंदे जिस देही च तुसी रह रहे हो, ये देही अते तुसी इस दे नाल जुड़े हुए हो, ये बड़ी सुखाली, बड़ी कंफर्टेबल, बड़े आराम दे विच है। अमृत शब्द उन्होंने वर्त्या है, पाप कि यह सोचते हो कि यह हमेशा ही रहनी है, ऐदा लगता है कि इसका कदे अंत आना ही नहीं है। हां जदों आ जाएगा उदों देखी जाएगी, पर जितनी देर तक अंत नहीं आता कहते तुसी ऐदा ही रहिंदे हो जिवें कि अमर हो, हमेशा लई हो। अमृत काया रहे सुखाली, कहते इस करके इसनू अमर समझी बैठे हो, जींदे तुसी इसे तरह हो जिवें कि हमेशा ही रहना है, अते बड़े सुखाले रहिंदे हो, कोई खास चिंता नहीं है। और जिन्हां नू गुरु दे वचना दा तीर लग जांदा है वह सुखाले नहीं रहिंदे, वह बेचैन हो जांदे हैं। फरीद साहब ने आख्या है ना, कहिंदे हैं

राग भीम फलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलते ने, तनासरी ते भीम फलासी इको ही सुरा ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुरते ठहरना है भीम फलासी विच ते तनासरी विच, केड़ी सुरते इदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम फलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते तनासरी विच पंचम ते शब्द भी तनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदस है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

0: बनाई राजपथ रथ नहीं दिलचा तैसे ही सुखमाया के उजो कहा गवा
1: अजू समझ बिगड़ा ना अजू समझ

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।